0: ये राल से हो गांगुने ना लॉरेंस अमला के कुछ हो शी
1: हम्म निम्न दे तुम जेट वाच आओ ला मशीन चल रही है
0: हम्म
1: योंग तेरी ये मोटर बेस आ ये मोटर कारो चेचो
0: तेरी गांगुने तो जीजू लंगो दे तो
1: जीजू लंगो आए
0: कार्टो
1: 아
0: 갈도지
1: 재미도 지주랑과 되는 야구 열이 유일한 곳이 돼야 맞죠.

0: ये रहा ना चला स्टे हो तंगी रंगे रंग रितुन शिव सा ना रितुन चिले में ती घरे काशु मीट निम तो किमसान सिस्टम या दी
1: अले
2: 琼松，你独立起，引起独立起。